अनलाइन अनलाइन एप्स तथा स्मार्ट स्पिकरहरुमा सुन्न सकिने यो बीएफपीएस गोरखा रेडियो हो।

0: SBS Gorkha Radio.
1: PFP's Gorkha Radio कार्यक्रम सुन्न लिया है निभाने उनसा श्रोता यो समय मौसम को साथ माहौल उनसा रा कार्यक्रम बाबा बने फिरी बनी केस चना ये समय मारा के हालों तभी को समय छह बार राय को सब अरे को लागे बने यो से 19th बार्षिक भेला उन्हें करें कुछ साथे बीबी की कार्यक्रम जून से तारों हो समाज यू के लिए आए चल गरी रहे कुछ सब बीबी ना आकर्षण हो रहे कुछ सब इस टीम में रावणी चे ऑल्डरवुड लेजर सेंटर बाहर उन्हें करें कुछ सब ऑल्डरशॉट में डेट से 8 अगस्त 2026 सैटरडे को दिन दूसरे को समय 12 बजे देखिए बेलुकी 10 बजे सम्म होने गए को साथ सो यही अनुसार जो जो तपाईहरु हुनुहुन्छ इन्जो गर्न सक्नुहुनेछ यो समय अहिलेलाई भने भारतीका राईको आवाजमा मिठो गीत नजिक इन्जो गर्नुहोला